वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहेगुरु जीओ। डोडी महला पंजवां। सतगुर आयो सरन त्योहारी, मिले सूख नाम हर सोभा, चिंता लाहे हमारी रहाओ। अवन तुझे दूजी ठार, हर परे हो तो द्वारी, लेखा छोड़ अलेखे छूटे, हम निर्गुण रेह उभारी। बख सद बिख बख सेंद सदा मेहरबाना, सबना दे आधारी। नानक दास संत पाछे परे हो, राख लियो ए बारी। दर्शन देख जिमा गुर तेरा, पूरन कर्म होए प्रभ मेरा। एह बनंती सुन प्रभ मेरे, देह नाम कर अपने चेरे। अपनी सरन राख प्रभ दाते,

गुरप्रसाद किन बिरले जाते, सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता, चरण कमल बसे मेरे चीता, नानक एक करे अरदास, बिसर नाही पूर्ण गुण दास, सो कहो अल गुल सेवियह एनस सहज स्वभाए, दर्शन परसे है गुरु के, जन्म मरण दुख जाए, होवे सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों झटिया, तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया, सजन सचा पातशाह।

0: ना खाए मन जम के साथ ना जाए।
1: ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए।
0: मन मार्ग ठाक न पाए मन पथ से परगट जाए।
1: मन मग्न

0: आखे दानव आखे देव आखे सुर नर मुंजन सेव
1: किते आखे आखन पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे
0: इते किते होर करहे ता आख न सके के ई के
1: जेवड़ पावे तेवड़ होए नानक जाने सच्चा सोए
0: जे को आखे बोल बिगाड़े ता लिखिए सिर गावारा गावार
1: ओ दर केहा सो घर केहा जितबे सर्ब संभाले
0: वाजे नाद अनेक संखा केते वावन हारे
1: केते राग परिस्यो कहियन केते गावन हारे
0: गावे तुहनो पौन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे
1: गावे चित गुप्त लिख जन है लिख लिख धारो बिचारे
0: गावे ईश्वर परमा देवी सोहन सदा सवारे
1: गावे एंद अंदा सुन बैठे देव त्यां दर नाले
0: गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध बेचारे
1: गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे
0: गावन पंडित पंडर की सर जुग जुग वेदा नाले
1: गावे मोनिया मन मोहन सुरगा मच प्याले
0: गावन रत्नो पाए तेरे अठसठ तीर्थ नाले
1: गावे जोध महाबल सूरा गावे खाने चारे
0: गावे खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे
1: सही तुदनो गावे जो तुद भाव रते तेरे भगत रसाले
0: और केते गावन से मैं चितना आवन नानक क्या विचारे
1: सोई सोई सदा सच साहेब साचा साचे नाई
0: हैप्पी होसी जाए नजासी रचना जिन रचाई
1: रंगी रंगी पाती कर कर जैसी माया जन अपाई
0: कर कर वेख कीता अपना जिम तिस्ती वड़ियाई
1: ज्योतिष पावे सोई कर सी हुक्म ना करना जाई
0: सो पातशाहो पात साहेब नानक रहन जाई
1: मुंदा संतोख सर पर झोली ध्यान के करे बभूत
0: चिंता काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत
1: आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत
0: आदेश से आदेश आद नील नाद नाहत जुग जुगे को बेस
1: भुक्त ज्ञान दया भंडारण घट घट बाजे नाद
0: आप नाथ नाथी सब जाकी
1: संयोग बिजोग दो कार चलावे लेखे आवे भाग
0: आदेश से आदेश आद नील नाद नाहत जुग जुगे को बेस
1: एका माई जुगत ब्याई तेन चेले परवान
0: एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान
1: जब तिस पावे तिवे चलावे जब होवे फरमान
0: ओह वेखे उन्ना नदर न आवे बहुता एहो बेडान
1: आदेश तिसे आदेश आद नील अनाद अनाथ जुग जुग एक वेस
0: सुन लोए लोए पंडार जो किश पाया सो एकावार
1: कर कर विखे सर्जन हार नानक सचे की सची कार
0: आदेश से आदेश आद नील नाद नाहत जुग जुग एको वेस
1: एक दूजी बो लख होवे लख होवे लख वीस
0: लख लख गेड़ा आखिए है एक नाम जगदीश
1: ये तरह पत पबड़िया

0: बसे मन माहे
1: जिथे भक्त बसे के लोग करे आनंद सचा मन सोए
0: सच खंड बसे निरंकार कर कर वेखे नदर निहाल
1: जिथे खंड मंडल वर पंड जे को कथे तांतना अंत
0: जिथे लो लो आकार जिव जिव हुकम तिवे तिवकार
1: वेखे विकसे कर विचार नानक कथना करड़ा सार
0: जत पहारा धीरज सुनियार अहरण मत बेद हथियार
1: खला अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत ढाल करिए सब

0: मान माने नमो रोग रोगी नमस्तं शनाने
1: नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्टे इष्टे नमो तंत्र तंत्र
0: सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनुपे रूपे।

जले हैं, थले हैं, अभीत हैं, अबे हैं, आगादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सर्व माने सुमस्ति निदाने नमस्वंग काले नमस्वंग पाले नमो

0: है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है।
1: के सर्वत्र माने है के सर्वत्र धन है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है।
0: सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है।
1: के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु।
0: सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है।
1: के सर्वत्र हंता के सर्वत्र घंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी।
0: सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भोख है।
1: के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश
0: है। सर्वत्र माली है सदैव प्रधानी है के सर्वत्र जापी है के सर्वत्र थापी है।
1: के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है।
0: सर्वं कली में के परमं भई में के आकल हला में के साहिब कला में।

0: के मितो पसा है के आतंक प्रभा है के चलंग नांग है के मितो अपांग है मन मान प्रणाम गुणगान मुदाम अर बर गंज हर नर पर पंज
1: प्रणाम मन मान सलाम हर नर

करुणा कर है, बेसंबर है, सुर बेसुर है, जगतेश्वर है, अजप अजप है, थप थप है, कृत कृत है, मृत मृत है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, कृता कृत है, अमृत अमृत है, बेसंबर है, करुणालय है, नृपनायक है, सर्पायक है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, अर्ता हर है,

0: नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजल नामे समस्तुल निवासे
1: कामंग बहुते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग परनासी सदर्मंग बहुते
0: सदा सच दा नंद सतरंग परनासी कली मनु करिंदा समस्तुल निवासी चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं वंशो वंश

0: अमृत पारा।
1: हमरे दुष्ट सब तुम काबो, आपा दे मोय बचाबो।
0: सुई बसे मोरो परिवारा, सेवक सिख सब करतारा।
1: मोर अच्छा निज करदा करिये, सब बैरन को आसन करिये। तो मैं शाड कोई अवर ना त्याऊं जो

मिलेंग बचे शरण जो वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरे पा जो सरदा कर सेम दे गुरु पारोता खंडा जाके हाथ में कलगी सोहे सो हमारी रक्षा करे गुरु कलगी तार सो हमारी रक्षा करे गुरु कलगी तार

प्रभ रूप ना रेख जोगी कहो कैसा डर होए रूप बिरख ग्रह बाहर सोए राहो निरपो जोगी निरंजन थ्यावै अंदर जागे सच लिव लावै सो जोगी मेरा मन भावै काल जाल ब्रह्म अग्नि जारै जरा मरण गत गर्भ निवारै आप तरै पितरी निस्तारै सतगुरु सेवै सो जोगी होए पैर रच रहै सो निरपो होए जैसा सेवे तैसा होए नर न केवल निरपो नाऊ नाथ नाथ करे बल जाऊ पुनरप जन्म नाही गुण गाऊ अंतर बार एको जाने कृके शब्द पछाणे सच शब्द निशान है शब्द मरे तिस निज कर वासा आवे न जावे चूके आसा कृके शब्द कम पर गासा जो दि सहसो वास निरासा काम क्रोध विकभूत भूख प्यासा नानक बिरलै मिलै उदासा गौड़ी महला पहला ऐसो दास मिले सुख होई दुख विसर है पावै ससोई दर्शन देख भई मत पूरा आठ सत मजन चरम धूरा राओ नेत्र संतोख एक लिवता राजे वा सुची हर रासा रा सच करनी आब अंतर सेवा मंत्र पता सियाल का पेवा जय जय देखो तै तैर साचा बिन बूझे झगरत जब काचा गुर समझावै सो जी होई गुरमुख बिरला बूझे कोई कर कृपा राखो रखवाले बिन बूझे पशु भय बिताले।

राम न जपया भाग तुम्हारा जुग जुग जाता प्रभ राम हमारा रहाउ। गुरमत राम जपे जन पूरा ते कटानंद बाजे थूरा जो जन राम भगत हर प्यार उसे प्रभ राखे कृपा धार जिन कह दया हर सोई तिन कह दरस परस सुखोई। सर्व जियां मैं एको रवै मन मुखंकारी फिर जोनी पवै सो पूजा जो सतगुरु पाए। ओ मैं मारै गुरु शब्द ए पाए हर दुख दिखाए संत क्यों जानै गुरमुख संत मिलया मन मानै। हम पापी निर्गुण कौ गुण करियै प्रभु हो दयाल नानक जंतरियै। सो लास्ट बदियां गुआरड़ी गौड़ी कियां गौड़ी बैरागण महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद ज्यों गाई को गोयल।

मन सीतर होवे जा जो मन सगली कोवे जा जो त्रतन हर हिले हर मिले बहर न छोड़े हर संग हिले जा जब कई बैकुंठ वास जा जब सुख सह निवास जा जब ए जास जपत अग्न न पोहत जा जब ए काल न जोहत जास जपत तेरा निर्मल माथा जा जब सगला दुखला था जा जब मुश्किल कुछ न बने जा जब सुनवाण तुणे जा जब एक निर्मल सोए जा जब कमल सीधा होए गुरु शुभ दृष्ट ऊपर करी जिसके हृदय मंत्र दे हरि आखंड कीर्तन तीन भोजन चूरा कह न जाए कहो नानक सतगुरु पूरा गौड़ी महला पंजवा गुर का शब्द अंतर तारे पंचन सो संग निवारे दस इंद्री का रखे वास ताके आत्म प्रकाश ऐसी दृढ़ता ताको हो ताके हो जाको दया मैं प्रभ सोय रहा साजन दुष्ट जाके समाने जेता बोलन तेता ज्ञाने जेता सुनना तेता नाम जेता पेखन तेता ध्यान सहज जागे सहज जागण सहज सोए सहज होता जाय सोए सहज बैराग सहज ही हसना सहज चूप सहज ही जपना सहज भोजन सहज भाव सहज मिट्यो सगल दुराव सहज हुआ साधु संग सहज मिल्यो पार ब्रह्म निसंग सहज ग्रह में सहज उदासी सहज ग्रह दुदा तन की नासी सह जाके सहज मन पे आनंद ताको पिटिया परमानंद सहज अमृत पियो नाम सहज कीनो जी को दान सहज कथा में आत्म रसिया ताके संग बनासी वसिया सहज आसने अस्त्र भया सहज अण शब्द बजाय सहज रुंजरकार सुहाया ताके घर पा ब्रह्म समाया सहज जाको प्रभु परयो करमा सहज गुरु भेट सच धर्मा जाके सहज पया सो जाने नानक दास ताके कुरबान गौड़ी महला पंजवा प्रथमे गर्भ वास्ते टरिया पुत्र कुलतर कुटुंब संग जुड़िया भोजन प्रकार भोग परे सर पर गमन करेंगे बपरे कौन स कौन स्थान जो कौन टरे कौन शब्द मत हरे रहा इंद्रपुरी में सर पर मरना ब्रह्मपुरी ने चल नहीं रहना शिवपुरी गा होएगा कश्रीपुरी गा होएगा काला त्रैगुण माया बिंस बेताला गिर तर तरण गगन अरतारे राव सास पवन पावक ने रारे दिन सरैन बर तर फेद सास स्मृत बिन सेंगे बेदा तीर्थ देव देहरा पोथी माला तिलक सोच पाक होते तो तीर नोत पर साधना होगा गमन करे गो सगलो लोगा जात वर्ण तुरकर हिंदू पशपंखी अणग जुण जिंदु सगल पसार दिसे पसारा बिन जाए गो सगल अकार सहज सिफत भगत हथ ज्ञान सदानंद ने चल सच थान तहा संगत साध गुण रसे अनुभव नगर तहा सद बसे तय पव भरमा सोगना चिंता आम जान मृत न होता तय सा सदा आनंद अनद खारे भगत दिस कीर्तन धार पार ब्रह्म कांत न पार कौन करे ताका विचार कहो नानक जिस कृपा करे नेचल थान सत्संग तरे गौड़ी महला पंजवा जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तुसे वड्याई जो इस मारे तिसका दुख जाई ऐसा कोई जे दुबदा मार गुवावे इसे मार राजो कुमावे रहाओ जो इस मारे तिसको पवना है जो इस मारे सुनाम सुमा है जो इस मारे तिसकी वह तिस न बूझे जो इस मारे सुधर गै सीजे जो इस मारे सो तनवंता जो इस मारे सो पतवंता जो इस मारे सोई जति जो इस मारे तु होवे गति जो इस मारे तिसका आया गणी जो इस मारे सुने चलतणी
जो इस मारे सो वड़फागा, जो इस मारे सो आंधन जागा, जो इस मारे सो जीवन मुक्ता, जो इस मारे तिस्की निर्मल जुगता, जो इस मारे सो सुग्यानी, जो इस मारे सो साहित्यानी, इस मारे बिनदायन पर कोट कर्म जाप तप खरे, इसी बिन इस मारे बिन जो जन्म न मिटे, इस मारे बिन जम इस मारे बिन जम ते नहीं छूटे, इस मारे बिन ज्ञान न होए, इस मारे बिन झूठ न धोए, इस मारे बिन सब कुछ मैला, इस मारे बिन सब कुछ जोला, जा को भय कृपाल कृपाल, जा को भय कृपाल कृपा ने दिस भई खलासी सिद्ध, गुरदुबदा है जाकी मारी, कहो नानक सो ब्रह्म विचारी, गौड़ी महला पंजवा, हर सुजरे त सब को मीत, हर सुजरे तने चल चीत, हर सो जुरे ना व्यापे काड़ा, हर सो जुरे ता होए निस्तार, रे मन मेरे तू हर सो जोर, काज तुहारे ना ही हो रहा, वड़े वड़े जे दुनिया दारे, काहू काज ना ही गवार, हर का दास निज को सुना, तिसके संखिन में उतरे, कोट मजन जाके सुन नाम, कोट पूजा जाके हर ध्यान, कोट पुन सुनो हर की बाणी, कोट फला गुर ते बेजानी, मन अपने मैं फिर चेत, बिन जाय माया के हेत, हर अवनासी तुमरे संग, मन मेरे चराम के रंग, जाके काम तो जाके काम तेरे सपूक, जाके काम न जो है दूत, जाके काम तेरा वड़ग अमर, जाके काम हुआ तू अमर, जाके चाकर को जाके चाकर को नहीं डान, जाके चाकर को नहीं बान, जाके दफ्तर पूछन लेख, ताकि चाकरी करो बसेख, जाके ऊन नाही काऊ बात, कया पने कह बात, जाके दृष्ट होए सदा निहाल, मन मेरे करता की खाल, ना को चतुर नाही को मूड़ा, ना को ही नाही को सूरा, जित को लाया तित लागा, सो सेवक नानक तित भागा, गौड़ी महला पंजवा, बिन सिमरन जैसे सर्व अर्जारी, त्यो जीवै साकत नाम विसारी, एक निमुख जो सिमरन में जिया, कोट दिन सलवै लाख सदा थिर थी रहाव, बिन सिमरन त्रिकर्म करास, गर काकुतन विष्टा में वास, बिन सिमरन पैकु कर काम, साकत बेसुआपूत ने नाम, बिन सिमरन जैसे सिंह सिदार, बोले कुर साकत मुकार, बिन सिमरन गर्दव की न्याही, साकत तान फरस्ट फराय, बिन सिमर को कर हर खाया, साकत लोभी बंद न पाए, बिन सिमरन है आत्मघाती, साकत नीच तिस कुल नहीं जाती, जिस पै कृपाल तिस सत्संग मिलाया, कहो नानक गुर जगत राय, गौड़ी महला पंजवा, गुर के बचन मोह प्रमुख दफाए, गुरु पूरे मेरे पैज रखाए, गुर के बचन ते आए हो मोह नाओ, गुर प्रसाद मोह मिलया थाओ, रहाओ गुर के बचन सुन रसन वखानी, गुर कृपा ते अमृत मेरी बाणी, गुर कै बचन मिटिया मेरा आप, गुर की दयात मेरे बड़ प्रताप, गुर के बचन मिटिया मेरा भरम, गुर के बचन पेख्यो सब ब्रह्म, गुर के बचन किनु राजोग, गुर के संग तरिया सब लोग, गुर के बचन मेरे कार्य सिद्ध, गुर के बचन पाया नौ निद, जिन जिन किन्नी मेरे गुर की आस, तिसकी कटिए जम की फस, गुर के बचन जा गया मेरा कर्म, नानक गुर भेटिया पार, गौड़ी महला पंजवा, तिस गुर को सिमरो सा सास, गुर मेरे प्राण सतगुरु मेरा आस रहा, गुर का दर्शन देख देख जीवा, गुर के चरण धोए धोए पीवा, गुर की रे नित मजन करो, जन्म जन्म की हम में मल हरो, तिस गुरु को चूला व पाख, महाअगन ते हाथ दे रख, तिस गुरु के गुर ढो पाणी, जिस गुरु ते अकल गत जानी, तिस गुरु के ग्रापी सोनीत, जिस प्रसाद वैरी समीत, जिन गुरमो को दीना जियो, अपना दासरा पे मुल्लियो,
आपे लायो अपना प्यार सदा सदा तिस गुरु को नमस्कार। कल कलेश पै भरम दुख लाथा कहु नानक मेरा गुरु समराथा। गौड़ी महला पंजवा मिल मेरे गोबिंद अपना नाम देव। नाम बिना त्रिव त्रिवे सने रहा नाम बिना जो पैरे खाए। जो को कर जूठन मैं पाए नाम बिना जेता बिहार। जो मृत मिथिया सिंगार नाम विसार करे रस भोग। सुख सुपने नए तन मैं रोग नाम त्या करे अनकाज। बिन जाय छुटे सब पाज नाम संग मन प्रीत न लावे। कोट कर्म कर तो नरक जावे। हर का नाम जिन मन अरादा। चोर की न्याय जम पुरबादा लाख डंबर बहुत विस्तारा। नाम बिना झूठे पासारा हर का नाम सोई जन ले कर कृपा नानक जिस दे। गौड़ी महला पंजवा आदि अंत जो आदि मध्य अंत निभाए। सो साजन मेरा मन चाहे हर की प्रिय सदा संग चाले। दयाल पुरख पूर्ण परत पाले रहा बिनस ते नाही छोड़ न जाए। जय पे का तेरा समाए सुंदर सगुण चतुर जी दाता। भाई भूत पिता प्रमात जीवन प्राण धार मेरास। प्रीत लाए कर दे निवास माया सले काटी गोपाल। कर अपना ली नौ नदर निहाल। सिमर सिमर काटे सब लोग चरण त्यान सर्व सुख भोग। पूर्ण पुरख नौत नित बाला हर अंतर बाहर संग रखवाला। कह न जा कहो नानक हर हर प्राचीन। सर्वस नाम भगत को दीन। गौड़ी महरा गौड़ी महल माज महला पंजवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। खोजत फिरे असंख अंत न पारिया सोई हो भगत जन कृपारिया। हो वारिया हर वारी रहाओ सुन सुन पंथ बाख सुन हुन पंथ डरा बहुत पहारिया। मैं आतकी उठ संताले उभारिया मोहन लाल अनूप सर्व साधारिया। गुरु ने लागो पाव दे दिखारिया मैं तकी मैं की मित्र अनेक इक सबलहारिया। सब गुण किसी नाए हर पूर पंडारिया चौंदे जपे नाम सुख सावारिया। मैं आही ओढ़ तुहार नानक बलहारिया गुरु का डे पूजा प्रसार मोक उपारिया। मैं जीतो जन्म पार बहुर न हारिया मैं पायो शरण दान कत कथारिया। हर दरगह सोभावंत बाल उडारिया जाने नानक लद्दा रतन अमोल पारिया। गुरु सेवा भोजन तरिए कहो पुकारिया। जान नानक लद्दा रतन अमोल पारिया गुरु सेवा भोजन तरिए कहो पुकारिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का फतेह।

0: कहां बुझारत बूझे डोरा
1: ये तो समझे पूरा
0: कहां बिशनपद गावे गुंग
1: जतन करे तो भी सुरपंग
0: कह पिंगल पर्वत पर भवन
1: नहीं होत वास गवन
0: करतार करना मैं दीन बेंती करे
1: नानक तुमरी कृपा करे
0: संग सहाय सो आवे न चीत बलुआ के ग्रह पीतर बसे
1: केल माया रंग रसे
0: दृढ़ कर माने मने प्रतीत
1: आवे मूले चीत
0: बैर विरोध काम क्रोध मोह
1: विकार महल उतरो
0: याहू जुगत बिहाने कई जन्म
1: नानक राख लो अपन कर कर्म
0: तुम ठाकुर तुम पे अरदास
1: सब तेरी रास
0: तुम मात पिता हम बारक तेरे
1: तुमरी कृपा में सुख मेरे
0: कोई ना जाने तुमरा अंत सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुमरी गात में तुम ही जानी
1: नानक दास सदा
0: कुर्बानी सलोक देन हार प्रभ छोड़ के
1: लागे नाम सवाए
0: नानक कहू न से जई
1: नामे पत जाए
0: अष्टपति दस वस्तु ले पाछे पावे
1: एक वस्त्र कर्म कोट
0: एक बिना दे दस बेहिरले
1: मुड़ा को कहा करे
0: जिस ठाकुर से नाही चारा
1: वो कीजे सद नमस्कार
0: जाके मन लागा प्रभ मीठा
1: सर्व सुख ताहु मन बुठा
0: जिस जने अपना हुक्म मनाया
1: सर्व थोक नानक तिन पाया
0: अगनत साहो अपने दे रास अपने अमान कस बाहर साहो ले
1: अज्ञानी मन रोष करे
0: अपने प्रतीत आप ही खोवे
1: और उसका विश्वास न होवे
0: जिसके बस्ते से आगे राखे
1: प्रभु की आज्ञा माने माथे
0: उसते चौगन करे निहाल
1: नानक साहिब सदा दयाल
0: अनक भांत माया के हेत
1: सर्व होवत जाना नेत
0: बृह की छाया सो रंग लावे
1: ओ बिन से ओ मन पुछतावे
0: ज्योति से सो चालन हार
1: रात्रि होते अंधकार
0: बटाऊ से जो लावे नह
1: ताँ कोई हाथ न आवे के
0: मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई
1: कर कृपा नानका अपलाय लाई
0: मिथ्या तन तन कुटुंब संभाया
1: मिथ्या होमे ममता माया
0: मिथ्या राज जोबन तन माल
1: मिथ्या काम क्रोध विकराल
0: मिथ्या रथ हस्ती असो वस्त्रा
1: मिथ्या रंग संग माया पे खास्ता
0: मिथ्या त्रो मो अभिमान
1: मिथ्या आपसे ऊपर कर्तक मान
0: अस्थिर भगत साध की सरन
1: नानक जब जब जीवे हर के चरण
0: मिथ्या सर्वन पर निंदा सुने
1: मिथ्या अस्त पर दर्भ को हिरे
0: मिथ्या नेत्र पेखत पात्र अरुपाद
1: मिथ्या रसना भोजना ने स्वाद
0: मिथ्या चरण पर विकार को तावे
1: मिथ्या मन पर लोभ लुभावे
0: मिथ्या तन नहीं पर उपकारा
1: मिथ्या बास लेत पुकारा
0: बिन बुझे मिथ्या सब पहे
1: सफल दे नानक हर हर नाम लय
0: बिरथि सात की आरजा
1: साच बिन आके होवत सूचा
0: बिरथा नाम बिना तन अंध
1: आमद ता के दुर्गंध
0: बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाए
1: मेघ बिन आज्यो खेती जाए
0: गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम
1: जीव कालपण के नरार्थ दाम
0: तन तन ते जन जय घट बस्यो हर नाम
1: नानक ताके बल बल जाओ
0: रहत अवर कछ अवर कमावत
1: माने प्रीत मुखो गंड लावत
0: जानन हार प्रभु पर बीन
1: बार पेख ना काहू पीन
0: अवर उपदेशे आप ना करे
1: आपत जावत जन में मरे
0: जिसके अंतर बसे निरंकार
1: जिसकी सीख तरे संसार
0: जो तुम भाने तिन पर जाता
1: नानक अंजन चरण परत
0: करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने
1: अपना किया आपे माने
0: आपे आप आप करत निबेरा
1: किसे दूर जनावत किसे बजावत नेरा
0: ओ पाप स्यानप सगल ते रहत
1: सबको जाने आत्म की रहत
0: जिस पावे तिस लय लड़ लाए
1: थान थनंतर रिहा समाए
0: सो सेवक जिस कृपा करे
1: नेमक नेमक जप नानक हरि
0: सलोक काम क्रोध लोभ मोह
1: बिरस जाए अमेव
0: नानक प्रभ शरणागति
1: प्रसाद गुरुदेव
0: अष्टपदी जय प्रसाद सत्य अमृत काहे
1: ठाकुर को रख मन माहे
0: जय प्रसाद सुगंधत तन लावे
1: जिसको सिमरत परगत पाए
0: जय प्रसाद बसे सुख मंदर
1: जिसे त्याए सदा मन अंदर
0: जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना
1: आठ पैर सिमरोत सरसना
0: जय प्रसाद रंग रस भोग
1: नानक सदा त्याए त्या मन जोग
0: जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे
1: जिसे त्या कत हवन लुभावे
0: जय प्रसाद सुख सहज सोई जय
1: मन आठ पैर ताका जस गावीजे
0: जय प्रसाद तुझ सब को माने
1: मुख ताको जस रसन बखाने
0: जय प्रसाद तेरो रहता धर्म।

0: संत के दुखन सो बाते हीन,
1: संत के हते को रखे ना कोई,
0: संत के दुखन थान परष्ट होए,
1: संत कृपाल कृपा जे करे,
0: नानक सत्संग निंदक पी तरे,
1: संत के दुखन ते मुख पवे,
0: संतन के दुखन कागज लवे,
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए,
0: संत के दुखन त्रिक जोन कर माए,
1: संतन के दुखन तृष्णा में जले,
0: संत के दुखन सब को छले,
1: संत के दुखन ते सब जाए,
0: संत के दुखन नीच न जाए,
1: संत दुखी का था कोई ना है,
0: संत पावे ता उपी गत पाए,
1: संत का निंदक महात ताई,
0: संत का निंदक टेकन ना पाए,
1: संत का निंदक महात यारा,
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा,
1: संत का निंदक राय ते हीन,
0: संत का निंदक दुखी यार दीन,
1: संत के निंदो को सर्व रोग,
0: संत के निंदक को सदा भजोग,
1: संत की निंदा दुख में दुख,
0: संत पावे ता उसका भी हो मोख,
1: संत का दुखी सदा अपवेत,
0: संत का दुखी किसी का नहीं मित,
1: संत के दुखी को डान लागे,
0: संत के दुखी को सब त्यागे,
1: संत का दुखी महाहंकारी,
0: संत का दुखी सदा बकारी,
1: संत का दुखी जन्म मरे,
0: संत की दुखना सुख ते डरे,
1: संत के दुखी को नाही ठाओ,
0: नानक संत पावे ता रहे मलाए,
1: संत का दुखी हद बीते टूटे,
0: संत का दुखी किते काज ना पहुंचे,
1: संत के दुखी को ध्यान परमाइए,
0: संत के दुखी जड़ जाए पाए,
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा,
0: सांस बिना मृत की
1: संत के दुखी की जाड़ किछ ना है,
0: अपन बीज आपे ही खाए,
1: संत के दुखी को अपना राखन हार,
0: नानक संत पावे ता लए अभार,
1: संत का दुखी ओवे ललाए,
0: जो जल विहीन मछली तरफड़ाए,
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजे,
0: जो पाप की तन नहीं तरपे,
1: संत का दुखी छुटे अकेला,
0: जो बाढ़ थेल खेत माहे धेला,
1: संत का दुखी धर्म ते रहत,
0: संत का दुखी सद मिथ्या कहत,
1: कीर्तन निंदा का तो रही पिया,
0: नानक पावे सोई थे,
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए,
0: संत के दुखी को दरगे मिले सजाए,
1: संत का दुखी सदा सहकाये,
0: संत का दुखी ना मरे ना जबाइए,
1: संत के दुखी की पूजे ना आसा,
0: संत का दुखी उठ चले नरासा,
1: संत के दुख ना सिष्टे कोए,
0: जैसा पावे तैसा कोई होए,
1: प्या कीर्तना मेटे कोए,
0: नानक जाने सच्चा सोए,
1: सबका तिसको करने हार,
0: सदा सदा तिसको नमस्कार,
1: प्रभु की उस्तुत करो दिन रात,
0: वो सास ग्रास
1: सब किस बाते तिसका किया,
0: जैसा करे तैसा को

0: जब आकार कश न दृष्टिता जब तारी अपन सुन समाद जब इसका वर्ण जेह न जापत जब अपन आप पार ब्रह्म अपन खेल आप दीजा जब होवत प्रभ केवल तनी जब एक हर गमा पार जब निर्गुण प्रसैस पाए जब आपे आप अपनी जो तरे अपन तल ताप करने हार अविनाशी सुख अपन आसन जब पूर्ण करता प्रभ सोए जब अवगत गोचर प्रभ एका जब नाथ निरंजन गोचर गादे अपन आप ही चर जा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता जय निरंजन निरंकार निर्वाण जय स्वरूप केवल जगदीश जय जो स्वरूपी जो संग समावे कर्ण करावन करने हार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई जय सर्व कला पेपर बीन जब अपन आप अपुर उतारे जय अपन ऊंचा अपने अब नेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद जय असल छेद भेदो असमाया आपस को आप आदेश जय एक है एक एक भगवानता जय अपन आप पति आरा
1: कौन कथे कौन सुनने हारा
0: वो बयान तू ऊंचते ऊंचा जय आप रचो पर पंच कार पापुन ते पे ही कहावत
1: नरको स्वर्ग विषावत।

0: भगत पहत है आप
1: पसरे पसार संत प्रताप
0: दूह पाका आपे तनी
1: की शोभा उन्हों बनी
0: आपे कोत करे नंचोज
1: आपे रस भोग नर जोग
0: जिस पावे तिसे आपा नाही लावे
1: जिस पावे तिस खेल खलावे
0: बेस मार थागनत तोले
1: है भलावो त्यो नानक दास बोले श्लोक
0: जी जंतु के उठाओ कुरा।